खनाई तो नहीं रंग सकती था खुक। आज शिक्षा तेई सिंह दिए मनी रिजाप मंग खना लाइ खा फायदी सिंह तबू दादा सीधा खापला सिनाई तिरी साल कामा पान्डव खापनी रंगसकनी दाखो बुखु तिरी पान्डव दंग आरजे उषा आं बाई गृंगी मानो दादा सीधा ककदुपनी विशिंगे ककदुप नम्बर 2326253 हाइनो हाई किदिंगी साफिरान नई थाम नई दग नई बा थाम बैलाओनो फायदी सैमान लाइन तिरी सालकामा पान्डानी कक प्रथमा दामो तिनी वर्ल्ड टूरिज्म डे एबा विश्व पर्यटन दिवस तिनी साल पालाई जाको तिनी साल नैजी स्नि एबा सत्ताईस तारीख 27 सेप्टेम्बर तिनी अ साल हंखे जुदा ख्लाई हजा ख्लाइनानी बाकी तिनी साल पालाई जाको अबंखा वर्ल्ड टूरिज्म डे एबा विश्व पर्यटन दिवस तिनी साल पालाई जाको अबनुरुगी चीनी तिनी सालकामा पान्डानी कक बथमा चीनी कक बही हंके अबसानी थांका हंके बेड़ाईखिरी हायुंगनी हायुंग बेड़ाईखिरी साल एबा वर्ल्ड टूरिज्म डे अंगेखेबा बांगला बाई सानी थांका हंके विश्व पर्यटन दिवस एबा वर्ल्ड टूरिज्म डे चीनी कक बाई हंके हायुंग

दाल आबुनि पाकै जों बेराय मुंगो मा गदाल लायो बरो किसासा खातुंनानि पाकै जरा किसासा रहरनानि पाकै जेफ्रु बखानो हेलेंग सासारनानि ककनो वानसुक लायो आफ्रु बेराय मुंनि तमुंनो बेलायनो जों बखाबाय मा गबाग लायो आबुनि पाकै जों बेराय मुं चिनि लांमनि कायसा बुबाक हाय चिनि लांमनि कायसा बेदेक हाय चिनि लांमनि कायसा बिप्रिं हाय जि बर' रग गोबां कुक बेरायनाय बंनि बोखा बखा हामकुक तंगो होनै एखेबा लुकुबाय तंनानि लुकुनो हामजाखनानि लुकुनो चुबानानि आमतेहाय बोखा अंगो होनै सालायो चिनि हायंगो बेराय मुंनि हालगो गोबां मा एखेबा बेराय मुं न रुगै गोबां मा रांरि आजिनाय रगबो तंगो गोबां मा हास्ते हाक्तर एखेबा अहायंगो गोबां मानो थाय दंगो आजागाव थानानि बागै बर' रग कबर जालायो चिनि हाबार आसेकि नायथके सिनामजाक हाबारनि तंराइदाव ओ नायथके सिनामजाकनो जों मकलबाय थांबाय नायनानि बागै चिनि खाबाय बुहरनानि बागै बेराय मुंनो जों मा गोबाग्लायो रांसाक्ति दाखु बुखु बेराय मुं चिनि लांमनि बागै बेरायनो नांगौ चिनि चिनि नखनि गानागिनि आमसायनि गानागिनि नखथारनि गानागिनि ओंगेखेबा चिनि हास्तिनि गानागिनि हाक्तरनि गानागिनि ओंगेखेबा हायुं गोनाङै जों बेरायनानि ककनो वानसुक लायो किसासासिनि रां पैसा उदा मुंखा हंखेनो रांसाकनि दाखु बुखु खायनोहाय किफिलनाय तिरिनि सालकामा पान्दाव फायो दाबुक जों खोनालायानो तिरिनि हायुंनि खरां पान्दा

0: बस्काङ अक्टोबर तालनि पहिला साल मारि मंगनां सचिन देवबर्मानि आचाय मुसाल आचाय मासाल पालाय जागानो 23 जुलाइबारि कम्युनिटी हल अक्टोबर तालनि सालनि सालिमारि महात्मा गान्धीनि आचाय मासाल पालाय जाखनाय अब आसाल पालाय जाखनाय शान्ति बाजारनि युनिटी बार्ग आसाल रगो बरकन बरमियाफोरै आचाय मासाल पालाय जाखनाय ते हुकुमो पान्दा बलवाजे जाखनाय होनै ककमंकायसो साजाखा अबाय ख्लायन तेलियामुरा बखाखस्थेयाव बहायन अक्टोबर दाननि पहिला सालमारिव तेलियामुरानि पुरपरिसद हाबानक गपालाय जाखनाय मंगनां सचिन देवबर्मानि आचाय मासाल ते अक्टोबर दाननि सालनि सालमारिव पालाय जाखनाय महात्मा गान्धीनि आचाय मासाल अपान्दारकन कितिङै सोंमुं ककखाल आचुकै रिगमुं बातायलायमुंबो संजा जागान होनै ककमुं कायसाव साखलायदा जाखा
1: दाबु खोनाबायदि तिरिनि नकबरतिबारनि ककथुमा आगुलि बिरखुं खलातै गानागिनि आमसाइनि नकबरतिबारनि ककथुमाव साख्लाय जाखा नखा चुमै गोनां दंनै फेरां ककै वातै फाइफानुमानो जागा जागा आमचायो तुंकुक मानि मारिवो नुकजागानो तुंसा मारिवो 35 डिग्री सेल्सियस तुंख्लाय मारिवो 26 डिग्री सेल्सियस नबारतै हकुनि मारि साखाव नुकजागानो 24% खामाव नुकजागानो 25% आसुक चरा खाना बाइखा तिरिनी नक प्रतिबारनी कक्तमा

아우, 그 파디증 세부고 버르틀라마니 거 카날레네. 어번카 스테트 온 뱅미 메카크데 기세 사북사 아속타나 소포나 바게 코일라 야사 자게 탄고 아속타니 몽카 매니저 다이 에시스턴 매니저 아로와 북사 아속타 탄고 가이 너이라 조고 시사 아무나 바게 이런 말이 응나랑나이 그레주얼 파스 하야카바 비에 비컴 BSc BBA BCA BE BTech avahai pass khlaijak nanang nai abone bagai omor nanang nai nokha bisi niji thamle simi nokha bisi thamse bani bisingo khade ja rokne bagai omor kisi sa holer mung thonga na nai saklai jakha abone bagai paithak salmare re jakha o september talni sal niji joko salmare ni bisingo अवाय के नो कॉर्पोरेट सेक्टर ने बखाते एप्रेंटिस ताय एजुकेटिव ने बुक्स आसोते ने सुपुना बागे कोयला यासा जागे तंगो आरोवा बुक्स आसोते तंगो रासाय चुकु राब्रिची चुकु अबने बागे उमर नंग नंग नंग नखाबिसी चिचाने सिमी नखाबिसी ब्रिसिने बिशिंगो ताय अबने बागे रिंगमारे इंगना नंग नंग কচ্চক মাধ্যমিক পাস হাইকবা গ্রাজুয়েট পাস খাইজাক হাইকবা বিএ বিকম বিএসসি বিবিএ বিসিএ বিই বিটেক এলএলবি আবরক পাস খাইজাক নানা নাই অবনে বাগে হাইকবা অ কইলাই রেনা বাগে পাইতাক সালমারি রাজাকা অ সেপ্টেম্বর তালিন সালথামচি সালমারি নে বিসিংগ अब बासी हार जगह आजो थे सपंग जगह अब बगे इंटरव्यू ने सालमारी रग दाय जरा रग कल लेटर विशिंगते सजागान हमें गौपन गाय सकल जखा अब हाइनो सेंट्रल पुलिस ने बखाते किसा बुक्स आजो थे सपना बगे कह लाइस जगह दंग आसुकथानी मंखा एस आई आरो बुक्स आसुकथाय दंग गाय रासाय चारा सिनेजिसा आबोने बागै रोंमारि नांनाय बीए बीकॉम बीएससी बीबीए आबाहाय

खानो हेलें सासा खलाइनानि बाखै वाइसौसु आयां उयां मा थांगौ सामुं नांखा हांखै तो ककसिग्रे बेबाक जागाबावनो मा थांगौ थांथानि फायथारि नुगुजों गोबां मा खुनजु खोनाया बर' रग इंखेबा बुरि रगनो साक नांया खुक नांया इंखेबा बन' लामा दै थांखा हांखे बन' आचम साख्लायै खरां कतर ख्लै रोंमानि दागारै रोंमानि इंखेबा बन' चपा सरि रोंमानि आमदे हायरगबो जों नुगौ जों बर' अहा साखानि जत' लांमा गोनां रगनो रुनानै नांगौ तामनि खोमालै बिनिबोथ' दङ गायसा लांमा लांमानो बरम रुनानै थांथानि न' आजाखाव खुनजु खोनाया दा मकल नुगिया दा एबा याखुं याक मानिया दा आबुनो जों वानसुखनानि ककरे बरम जों जतन' रुना नांगौ आरो नै बिसिं तुमुं तुमुं न' आब' बोरै होनखेथ' तैबो न' रुनानै नांगौ रांसाकनि दाखु बुखु दिनैनि अ संसार जाग पान्दा तुमि अनन्न एबा नों बुनिसै जुदा अ पान्दाव जों जुदा ख्लायि खुनजु खोनाया बुरि रगनि ककलामनो तिसावै बरकनो बरम रुनानि ककनो रायसालायो नरक जतन कबकनाय नरक गोरोंगि मानव केबो तुमुं गाना गिनिनि खुनजु खोनाया रग दंखा हांखे बा केबुनि बरकनि खायकमानि खादुमानि केबा खा थारिमानि आमते हायरग तुमुं दङै दंखा हांखे नरक दादाक सिदाक जोंबाय सावि मानव सियार खाय मानव दै जोंबाय गोरोंगै मानव ककदुक नाम्बार 232253 हायन' हाय रोजाबुंनि हाफाराव जों गिफिलायनाय अ रोजाबुं तो बेलाय न' खोनाथ' नरक बाय खोना काहनखे तैबोनो खोनाथकनाय दिनैनि असाल अजराव अरजाबो

खोनालायनाय हायनोहाय दैदां सारजाबमुं रांसाकनि दाखो बुखो खोनादै दाबुक अजराव अरजाबमुं न'

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन।

0: महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
12: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008

दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने

राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवड़ता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं।

तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही है। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद

उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे

दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े, और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से
यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को

बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ओडीओपी के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती है। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा यह अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए।

0: वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिका नेत के रूप में की जाती है, और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।

रिन जों आयुदावा राम मंदिर नगुई मानखा आं तो बेलाइनो कपाल कहाम आं बिनी अ तमुंग नो गानाव तंगुई सिमिन नुखा आसिग्या तामके आं बो बबाय अ सामुंनि बागै गदालमानि जराबु मानखा आं जेफ्रु राम मंदिरो रामनि प्राण प्रतिष्ठानि पांदाव मानजागै तंफुरो आफ्रुबो आं बनो बेलाइनो मैतु मामां मानै तंमानि अब उंनानै बो ककनो किसिंसं अशोक चिन्हतै अबहाय कक गोबां मान तंगो फिया आ कक्रक बिसि सालायजाक थाया राम मन्दिर चबानि लगि अब हदानि खा फेलाइमा तै कान बाक्सा गोरैनो केबेंगै कायसा कतर चबा खालायखा ब कायसा कतर खरुमपै नुखुंग आसायबानि बिनि आसाय संनि बिसिंग ब गोबां कुकनो कतर आसुक थायो तंनायर ब बायथांबो आई आई टी बी एस यू नि ग्रेजुएट फिया आसुक जत तंमा बिसिंगबो हदा तै हुकुमनि बागै बिनि लांमानो याफारका अबनो बरक गतनि सिनेमु तिनि आं बिनि फिल्रा बिसि आसायमा सल' रोजाक रोजाक बनो हामजाखनायनि बोखाक्तै खाबाय बरमै खुलमु याफारौ आनि बोखाक्तैबो खाबाय खुलमु याफारौ आनि खाफांनि हाथनि लुकुराव अ बिसि च्यांमानि जों बायथां बरमनि कायसा कतर तेनि बिसिंतै च्यांमानि आ तेरोंखा सोमनाथ सभिमान पर्व दिनैनि सिमि बिसि सायरा सोखां चिरा नैचि दग इंराजि बिसिव' महम्मद गजनि पुइला सोमनाथ मन्दिनो सोबायमानि फिया जेबरक सोमनाथनो सोबायि भारतनि सिनेमुंनो हुनानि फायखा ताबुक बरफनि मुंसा मुकुमु गोरै तै सोमनाथ मन्दिर कतर खे कतर थैजलां रुकुंग भारतनो थैपेलेयानि रुवायरै तंगो अबनि बागैनो जों कुंसुगुइ अबिसुव सोमनाथ साभिमान पर्वनो पालायखा किसिंसं अकक आं तिनि मन की बातो तांगै तेवैसा सायतंबा अबनिबो कायसा जुदा कुक्सा तंगो चिरा निशिदक इंराजि बिसुव जेफ्रु सोमनाथ गजनिबाय सबायजाखा आ बिसुव गुजरात अनो मादेरानि मंगनां सूर्य मन्दिर नबो चपरबखा सबायख्या सामाके मदेरा मन्दिर सबाय जाखमानिबो बिसि सासाय काखा फिया आ जराव मतायन तां पाइमानि बिसिसा काद्रबसिखो चिरा नैचि बा बिसिव अ मतायनकनु तांखा बबागरा भीमदेव किसिंसं नरक आ जरानि ककनु वानसुं नायला आसो कतर चप्रपमुं ओंखा सोमनाथ हाय पुइतुनि खर्न सोबाय सुख्रुब खालायखा ते किसासो थायोबो चप्रप मानि जेसा हदा एबा हाफांनि खाबाय मानो फिया बबाग्रा भीमदेव पुइला बगजनि न' सिमि केबेंगै बातलिया फिया जरा किसानि बिसिंगन मदेरा व हायनो हाय सूर्य मन्दिर तांफिका अबहाय खा राखमानि बागैनो सोमनाथ मन्दिर मार मार सोबाय जाखफानो सोनामफिर जागै तंखा किसिंसं मदेरानि सूर्य मन्दिर सोबाय जाखमानि अलबो चप्र जाखमा थाक्लिया अल आलाउद्दिन खिलजि तेवैसा नायथतक आ मताय नंनो सोबाय फिउखा फिया किसिंसं जों भारतनि बर'रक साल मतायनो खुलुमानि पुइतु ताय मन्दिरनो नुगुइ सिमि खुलुमया जों साल खुलुमानि बिनि कायसा ककमां ओंखा नगजाखमानो खाख्राखमानो सयमा ताय थाखलायाखि खा बासाजाखमानि अबनि बागै मदेरा ताबुक साल मतायनि बागै सिमि सिनिजाग्या फिया गुजरातनि आ कामि हाक्तनि पुइला सालचिं कामि एबेकर सुलार भिलेज चिं फेरां कामि ओंखा मदेरा ताबुक जत बोखाक्तै सालनि पहर बाय चनासाव

हे कामिताय दलिव थंखरों रुतुगुई कारी ना नांगनाय अमहाय गबांमा बरक तंगो जेराव असामुंनि बागै बायथांनो याफारि रखा बरकनि कायसानो नाहारमु उक्ति गनां थंखरों नायतुगुई कारी नानिताय बनो चासारवै तिसानानि राजेंदर सिंहजी पान्जाब अबहायनो कायसा सामुं खलाय तंगो राजेंदर सिंहजी अमहायनि खरक्सा बरक जेनि मुंनि बोसकांगाव सिनियर कक्थाय गदाल जाग दंगो ब अबदल बाय गदाल जाग जे बदल 1980 बिसिव अलिम्पिक हकि थमुंग रांसाकनि सखात मानु ब 1982 बिसिव विश्वकापनि खरक्सा मुं गोनां थंखरों थंबानि 2001 बिसिव भारत पुइला सलारंनि जुनियर हायुं काप सखात जितिव 2003 बिसिव हाक्टर सिनियर काप जितिव ब अ कायनिनि टुर्नामेन्टनि कोच ओंगै सामुं तांखा ताबुक ब राउन्ड क्लास हकी एकाडेमिनि बिसिंतै बिनि अ नाहार मुंनो सोखांगै तलाङै तंगो बिनि सायथुमुं बाय कामिरग ताबुक कोताल हकी एस्ट्रोट्राफ बजाखा राजेन्दर जिनि नाहार मुं बेलायनो स्राय स्राय जे कामिरग काहाम कुचिंनि सेबसाब गोरै अमहाय कामिनि चराय रग्नो रुतुक रुतुक कारिनानि अमहाय चाइटुमुनि बिसिंतै भारतनि जुनियर ता सिनियर बेरम गोबांमा थंखरों रग बायथंनो सासारुइ तिसाका राजेन्दर सिंहजीनि सामुंनि बलायमुं सावै साबाया आनि खापंनि हाक्तुनि लुकुरग आमलाय चिनि जतनि सिनिजा कायसा बोथाय अबबाय सोनामजाग आचार ताय जेम गोबांमा नुखुंगनो जाजागो बाक्साबा आमलायनि जोसनो थगजागो ताय गोसांमा जराखे चवनप्राज चिनि सालबुनुय चामुंनि दाल कायसा ओङै बाचौ चिनि आसाय सेखां सं कुसुं कुसुं जरा रमैनो आमलाय नि हामारिनि कखनो सावै थांका किसिंसं ओ आमलायनो ताबो उत्तर प्रदेशनि प्रतापगढ़ कायसा कोताल चासामुंनि यापरि ओङै कासाका प्रतापगढ़ ताय प्रतापगढ़ बाय आमलायनि हालक बेलाय गोजाम आरो नि हुकबार खलायनाय रग आगिनि सिमिनो बरक आमलायनि हुकबार खलायै फायो आमलाय ताबु प्रतापगढ़नो कायसा सासामुंनि सिनिमुं रुइ तंगो ताय ताबुक आ कोसाम सिनिमुंनो आरोनि हुकबा खलायनाय ताय बोरै रकनि बागै सेब कोताल तुबै तंगो वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टनि बिसिंतै आमलायनो तै आमसायनि साखथांनाय रकनो खा बासा रोजागै तंगो ताबुक प्रतापगढ़ आमलायनि प्रसेसिं बाय गोरोंजाग ओंया हम्फानो सारा इउनिट सामुं तांजागै तंगो ताय सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय गोदालजाग बोरै रक जतनि साय कतर सामुं तांगै तंगो अबहायनो कायसा ग्रुप ओंखा देवगढ़ कामासि कामिनि साबित्री फुले एसएसजि ग्रुप बाय गोदालजा बोरै रक आमलायनि केन्दि जेम ताय जुस सोनामै तंगो वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्ट तांबो तांनि बिसिंतै कोताल कोताल हाथिव अमानै फालजांमा बाय बरकनि आजिमुंबो बांगै तंगो अब हायखेनो कायसा कामिव बिद्दाबासिनि मुंगै कायसा सेल्फ हेल्प ग्रुप तंगो अ ग्रुपनि बोरै रखे आमलायनि आसार डाइजेस्टिव पाउडार ताइबो जुदा जुदा मानै सोनामै तंगो अ बोरै रक अ प्रसेसिंनि बागै नांमानि मेसनारिबो मानखा ताइ लननि सेबो मानखा बरक आमसायनि बानिया तेर' मानै फालनानि सेबो मानखा ताइ जरा किसानि बिसिंगैनो बरकनि आजिमुं बांखा किसिंसं सिनि हाक्थनि जुदा जुदा आमसायनि बायथों सिनिमुं तंगो बाक्सा थायो तंगो बोथाय बाक्सावखे सिरिसिटिनि हुखुमु मुखुमु ताइ बाक्सावखे तंगो बिनि रोंमारि वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टनि बिसिंतै अबरकनो आवायमुंनि बिनि नाहारमुं सिनि चाइतुमुं ओंखा नांनाय सिनि कामि ताइ दलिनि सिनिमुं आमसायनि हाथी रग सिमि कसाउता तंथुम अब हाक्तनि जुदा जुदा थाय ताय हायुनि जुदा जुदा हाथीव सगैरना नांनाय

अब न बुकाल फर लोकाल तांग बुतांग नो चाचरुई तीसाओ बैथंग सुगजाक भारत सनाम थानी बो खा बासारुओ बसकांगनी तेरग बुकाल फर लोकाल नि कम थायू रखनो बो पखे चुगलाक आनी खापंगनी हाक्तुनी लुकरक सेप्टेम्बर ताल अपुस्तिनु केबेंगै सबनी बागै याफारजाक पुस्तिनी अतालो जुदा जुदा दिखुलनी लुकु ताय मथारक बलायजांनाय सामुं बाय गदाल लायो अपुस्तिनु केबेंगै चबावो चबा खलायना बागै ताक्लाय बिसि गोबांमा बलायजांनाय यापिर रमजाखा छत्तीसगढ़ हार घर मुंगा घर घर मुंगा अ तांगबुतांग चेंखा अ आउमुंग तांगबुतांगनि बिसिंति लुकुरखनो सारबुंनि चामुंग सेसनानो तन्नानि बागै खा बाचार जाखा गुजरातबो मासैबाय सोनामजाग सामुंनि बाथायमुं बांगि चेंजाखा आ बाथायमुंनि बिसिंतै पुष्टि गोनां आमसायनि सामुंनो रांखिसाबायनो मानथगै तंखा ताबुसुग जरा नै रासाय निसाय गोबां लुकरक अ बाथायमुंग मानजाखा महाराष्ट्रबो अबहायनो बलायजाखनाय सामुं खलायजाखा आरो फोरोंनाय अंगनवारी वार्कार बुमा बुफा अ सिचारमुं सामुंबाय गोदालखा मिजोरामो ताक्लाय बिसिव पुस्ति बागान नायकानिनि बागै लुकरक गथालायि सामुं खालायखाते आवमुं चेंखा अब मिजो हौवानि तालुमार याना सिरसिति बाय गदालजाक बिनि ककमांगोंखा साकथारि सेबा खालायमुं ताय जत जरव बुइनु जबाना बागै सोखांगै तंनानि अमहाय चायतुमुं बेलायनो बलायजाखनाय आंगनवारी सेन्टार बाय गदालजाक जत लुकुरखनो तै आनि कुंसुगु आंगनवारी सेन्टारो ताबुक पुषण ट्रेका डिजिटेल बाय गदालजाक अंगिया हम्पानो चुकु रुजाक सेब माननाय रखनो रेजिस्ट्रेसन खालायजाखा अबबाय चराय सागदेरिया बोरै ताय दुध चारिउ तंनाय बुमारुकनि साग हामखारायनि नायखानि खालायथानि बेलाय हामखाराय ओङै तंगो जों अबहायखेनो अपुस्तिनो केबिङै चबा खायै बोसखांगो तलाङै थांना नांनाय जोंथिनि दफानो जेतिखे फानो अपुस्तिनि याकनि फियक सुखना नांनाय किसिंसं जों जतन' अतालो बोखाबाय खुलुमलायै गणेश मोताय तेरपालायखा हाथर गोनाङै गणपति बाप्पानो खाबाय खुलुमबायखा ताय लामसका अतेर गोथार बेबा हाफारनो तंथतक खालायतिसाखा किसिंसं केमुमुं काटिरनाय मताय गणेश एलेम सिमुं ताय सामुं काहामनि मारि मताय गणेशनो खुलुमलायमानि भारत हावसिमिया साना थांगे थाइलेनो तंनाय मोजां पेन्टुन थिरकानजुनि ककनोनो वानसुगैनायदि आरो मताय गणेशनो मताय रोजागु फारा फिकानेट मुंगै तै बिनि उमर जेफुरु जिचुको आफुरु बुफाबनो मताय श्री गणेशनि मांपली याफारमानि आरोनि सिमिन मतायनो पैतो तैमानि सिसावैफायो ब मताय श्री गणेश बाय गदालजा श्री सिथिनि सोरांना बागै बोरैसि बिसि लायरेखा ब भारताय नेपालनो खबै एसियानि गोबांमा हाक्टरगो बेरायखा महाराष्ट्र बाय बिनि आलायदा गदालजाक दङ अस्त' बिनायकनि श्री सिथिनि ककनो सायमामानि याकल' गोबांमा जरा ब आरो फायखा बिनि सायतुमा बाहायनो थाइलेण्डआव अस्त' बिनायकनि लुकु खाफुमुं मानै फायखा 2002 बिसुव ब उत्तर थाइलेण्डनि चियां मायो गणेश हिमेल मिउजियाम संसाखा ताबुक आरो चि सायनि गोबां मताय गणेशनि मूर्ति तंगो जे लुकुरक भारत फायै मान्या बरकनि बागै मिउजियाम अस्त' बिनायक मूर्तिबो तनजाखा आरो ककटिसाल ब्रुमनो फुं दामचि जराव गणेशनो मताय बारुकजागो मताय गणेश बाय गदालजाक नांकुकमानि जरावबो रायदा तै मताय रोजागो अब फुनुगो बाहायखे भारतनि पुयतु रबाय ताय श्री सिटिनि हुकुमु गुबुन हाक्टरबो लोक खाफुरमुं मानै

0: অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র থেকে। এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাস। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकाले। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
2: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
2: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिका

आउसिंग खनालाई खा सुखजरा लाइबुमानी कथमा पान्दाओ राजमाला बेजाब न परिमानी बेलाइ खेन नाङखुखमानी अपरिमु जों जतन खानानै नांगौ जिनि त्रिपुरा हानि बुबाग्रा रगनि गोथां लाइबुमा कथमा जों खानालाइखा फारि बोसगांनि सालगाव जों दाइबो खानालायानो अजराव खानालायानो दाउ जरानि खाना तो तोर गजाब मुंग तांशा

0: सिस्टर बाहर आओ, नीचे क्विकली सिस्टर।
1: नीचे
0: सिस्टर,
2: क्या निमा, व्हाट हैपेंड?
0: जल्दी आओ नीचे हो सिस्टर, कम डाउन।
1: क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा क्या ड्राइवर कुछ नहीं है? ब्लिज़र्ड पे बाहर क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज नीमा, लीव मी अलोन फॉर द डे एट लीस्ट। तंबू में चलो, तंबू में चलो। रूसी आए आए आए आए, वापस चलो, वापस चलो।
3: सिस्टर सिस्टर सिस्टर, लुक लुक, ये मैन सिस्टर, फौजी लगता इधर पड़ा है। रूसी ने देखा सिस्टर।
1: क्या बकवास कर रहे हो? इखाने मानुष आसबे केमन करे?
3: कम सिस्टर कम, इधर आओ, ये देखो ये देखो।
1: ये की ये तो एक जो सोल्जर है, इखाने केमन करे एलो? एंड ही इज अलाइव।
3: हाथ मत लगाओ सिस्टर।
1: क्यों क्यों?
3: दुश्मन हो सकता है, परदेशी।
1: नहीं नहीं, ये तो इंडियन है, पोशाक देखे तो मन होच्छे आमादेर ही सेना ऑफिसर।
3: इंडियन? इतना दूर कैसे आया सिस्टर? 20,000 फुट का ऊपर इधर कोई आदमी नहीं।
1: सीएचएन में लड़ाई हो रही है, सुना नहीं? चलो क्विक क्विक।
3: जख्मी है, ये देखो खून का निशान।
1: अरे पकड़ो तो सही, जल्दी उठाओ, टेंट पर लेके चलो।
3: सिस्टर
1: इखने थकले मुझे जावे।
3: खतरा है सिस्टर, खतरा है, मत लेके जाओ।
1: नीमा मैंने कहा उठाओ इसको।
3: सिस्टर तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, कैसे ले जाएगा?
1: प्लीज डोंट टच यू, कुछ नहीं हुआ मुझे। चलो एक जन मानुष एखने मरते बसे छे, और आमी डाक्तार, आमी ताके सेई पथे ठेले देबो। चलो चलो चलो, उठाओ उठाओ।
3: यस सिस्टर।
1: बी केयरफुल निमा, पैर में चोट है इसको। ठीक है, कतक्षण बरफेर उपरे पड़े आछे के जाने। ता निमा निमा मत जाओ, खतरा है, टेक योर लेफ्ट, टेक योर लेफ्ट।
3: यस, बहुत बहुत बहुत भारी है सिस्टर, हमारा सब कुछ भीग गया। संभल के सिस्टर, संभल के, बहुत ब्लिजर्ड है।

जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुनि बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, छाया तो कैसे नहीं जाओ।

0: बाइनो ग्रह तुम सब अ सांभरी दा खादी आसु थाई कनक सिंह न मोर आसु रही मां सातम को प्राप्त माने लेम सु का तो से तिनी भाबे मान लिया ताकि छा तुम खु तो इकी सारी फेदी बाय
1: हे आसु सातम जरो दा नंग बाय थांग मान आ उतारु तुकी पा द्रुता नोंगो मुया कलांमानि न' गिसा आउन्दर' संगै रेखाता निनि कुमैखे मास मास लांनिया दाबोदि बजारारो फाया जाफैनो सिद'
0: आं ताइ बेसिलेर मांग्ला खाबाय लामा बहाजाल मा थांनानै आमा मासाबो मियानि सिमे हामेजों नाय दंखा खुलुमसे गाय मा फाइसिव'
1: दा मासो सालुगारनो थांनानै बं थानि दाम दाबोदि बजारारोनि माइ खबजा जाय थानि गोजान गोजानगा सारिरगो सावथान्दाखे थानांगाबा थांनिदाम
0: आनि अ आमा मासानोसै आंखाय बेलाय खेवाना सिवबाय आनि सायसुनि बाबेखाय आङासो वासवाना लियो
1: वानो इबु सायाथा जेखो पालगा थुना थांबासे गथगो साबुलेस आबुनो कासुइमा नाय
0: हले हायनोबाय कपालनि बारानो साबजे मान मतारो बेसे बिमानि आबुनो माननायता
1: थांदि दि बरंखा तुगैसे थाइदि इ गानि रिगनाय रक तलांदि साबुन बोतलांदि कलनि दै नों तुगै सारन नांजाग्लो लयखुरिबा
0: अर माइ रक सानाखे आं टेल सिलेनाखे बाय
1: दसु ददि थांनि तुगै फाइदि आं मसिदि गिसा देंग नागराना

खनानी अवाई बटांग रो खनारा जगन खना फुंनी दाम दक्तामै सतिनि जेबो खनारा जगन हाइनि खरां पांदा ते खानालो बुइर जाबै खनारावन सुभाष देव बर्मा दिपो दाम तिनि तामानि जराव खनारा जगन ब्रेरावने पांदा नुगुल विमेन्स एडुकेशन रेगि कोकलाम पांदा सै खनारावन मार्गारेट देव बर्मा ते यागुलो दिपो दाम तिनि तामै सति थानजो खनारा जगन खेरेंबार पांदा लुकुरो हमजागै गबो हमनि रिसाबमु ते शारीरिकनि दाम तिनि तामानि जराव खनारा जगन आसु आसुनि खातुमा पांदा सही खनारावन सुबुद देव बर्मा ते यागुलो रजामुगो खरांगारावन मुगली देव बर्मा।

मथांगै नारगो हनके जों बोफां वाफां एबा माल मातानो सिमिनो मथांगो हाया जों आजोतो लांगमानि तंगोरंगरखनो से करा खलायो हाखनि जुदा जुदा बखागो अंगै तंगमानि किसासु साक्टर मुंगो वानसुमुंगनो बेलाय नायथ' खलाय बसकांगो तुबुई फायो किसिंसं आसामनि सुनाय रुपाय मुंगै कायसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरि दङ जरा कायसाओ आरो गोबांमा मायुं बदल नुकजाकपानि फिया तरुक तरुके आरोनि बलंनो लुखरक दखल खलाय नामाबाय आरोनि सिमि मायुंरक हाथसाल थांना नांखा बिसिथाम सिगां पुइला दखल खलाय तंनाय रखनो नरै जागा नाहारजाखा तै ताबु आरो कायसा वानामा सिंसा चासामुं नुकजाखा मायुं बदलरक ताय वायसा आरो किफिल फाइफिका जे आमचायो जरा कायसाओ बरकनि थांलायसुनि थाय तंमानि ताबा आरो तेवायसा मायुं बदलरक हिमलाय तंमानि नुकजाखा किसिंसं आसामनु ते कायसा बेलाय नायथटक साक्टार मुंखा अक साक्टार मुंखा कायसा चिकुनसा लांमा गोनां यं पिकमि हकनो मोथांजाकमानि जरा कायसाओब कामावै थांनाय लामा तंमानि आ जराव बेबागै मागद पिकमि हक बायखे कायसा कन्जार्भेसन प्रग्राम चेंजाखा तै बरकनो बलंगर फेगुइ रोजाखा बरकनि तंथायनि बागै जाबारा बारिबो खलायजाखा दिनि अ तांबोतांनि बिसिंतै ताबो पिकमि हक बाङै सारा चुकुनि गोबां ओंखा किसिंसं हाबर बायसिनि गोदाल मुंबो मथांगै नारकना सिमिया वासेवसु जेफुरु जों हाबानि नायकानि खलायो आ हाबारनो चिनि लांमानि लगिसं ओङै थांगो पश्चिम बंगनि किसासु बुखुकसं अबनतै कायसा खापा साजाखनाय फनुंमारि खलाय फनुका झारखण्डनि बोरि रखे मंग्रबनि बलंसोनामै दङ बरगनि बिसिं गोबांखौ बोरि रखनि बोसायसं मोसाबाय चपरजाखै लांमा आरिखा बोसायनो गमामानि या गल' बरक सुन्दरबन लांमन मोथांगै तन्नानि लामरुतुगै मानखा बरकनि कायजाक मंग्रब ताबु कामिनि नायमोथां ओङै बासाखा तै अबरिरक फांसाराकाय रां फैसाबो आजि तंखा किसिंसं फायदिजों तंखरनो मोथांमानि बिसिंतै हाबानबो मोथांगै नारग्लायानो तै दाल बिदालनो मोथांगै नारग्लायानो अमहाय जुदा जुदा चायतुमुं थिनां आसायसंनि बागैसिनि खलायतां आनि खाफांनि हाक्तुनि लुकरक सालकिसा सोखां हाक्तुनि रासै रासै सिख्ला सिख्लैरक फेंकनाय मानैनो केबेंगै बेलाय नांखकमानि सोमाय तांलायखा सिख्लारक बायथंथ्र फेंकनाय मानैबाय हाक्सालै तंनाय सोमाय तांखा तै अ ककनो गुबुनि थानि तुनसाय रोनानि बागैबो याफिरि रमखा अ तां बोतां जतनो ओंखा नेसा मुख युबा अभियान तां बोतांनि बिसिंति अ तां बोतां सारा हाथिबा रमै चलिनाय आरो माइ भारतनि भलन्टियार रगबो गोदालजाक दङ एनएसएस बाय गोदालजाक चिनि सिखला रगबो आरो दङ स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिओ अबबाय गोदालजाक तै गोबांमा हदानि मथारक तै स्पिरिचुअल बाय गोदालजाक बदल रगबो अतां बदल बाय गोरोंजाक दङ साना थांखे थांनाय साल किसा सोखनि बिसिंगनो हाक्टर गोनाङै साय साय सोमाय तांमुं पान्दा तै सिसारमुं तांबोतां संसार जाखा किसिंसं अ तांबोतांनि बिसिंग' आनि कायसा बेलाय जाजाखमानि ओंखा अबंखा फेंकजांनाय मानैबाय सालै तंमानि ककटन चिनि सिख्ला सालायसं अ ककटमानो बरकनि बायथांनि ककबाय तै बायथांनि लामतै आवाय दङ आं मनकि बातो चिनि सिख्ला किसिंसंनो बरकनि क्रिएटिभिटि बायखे अ आयुमुंगो मानजाखनानि बागै सामानि तै आं बेलाय खातुंगो साय साय सिख्लारग आनि कबुमुंनो नारगबायख्या माइ भारतो बसंनि रोसाबमुं सल'गान सैमुं लामफ्रा थुन्नु खाय जुदा जुदा बाथायमुंबो संसार

जाखा अबहायखनो सोशल मीडिया नि बिसिंतै सिखलारक हैशटैग नेसामुख युवा बायखे बायथनि क्रिएटिविटी कंटेंट शेयर खालायलाय दंगो थाना थांके ककतुमाबो सिखलारकनि न आवयनायबो सिखलारकनो ताय आबनि सखांगै तुलांनाय फानबो सिखलारकनि न फायनाय सालरगो ओ आवयमुंनि बिसिंतै साखामखरायनि आमजोमुंताय देन सिबिनि तांबोतांरबो संसार जाखनाय किसिंसं सिनि गबांमा तेरताय पालायमुं दातिनो फायदोंगो अजरव तेरनि तंथमुंनि गसारो फायदि जों सिनि बारा बायसिं फासिंगो बवायसा नाहरै नायलायानो तुमुं खरकसासोग सिख्ला हामिया सामुंबाय गदालै तंखे बबाय ककसादि केब फेकमुंनि याकनि याकनि सायतगुइ तंखे बनो सुबादि फायदिसिं जतन गथावै कायसा फेकमुं करै हामसाजाग भारत सोनामथनिसिं जतन गथालायै सखांगै तलांलायनो आनि खापंनि हाक्तनि लखराव ताक्लाय लाल केलानि सिमि आं थमुंनि बागै कायसा टेलेन्ट हान तांबोतां साख्लायखा भारत चयावै थमुंग काहाम ओंखारि मानाखे कामिताय दलिव थोंखोरों रुतुगुइ कारिना नांनाय अमहाय गोबांमा बरक दंगो जेराव असामुंनि बागै बायथांनो याफारि रोखा बरकनि कायसानो नाहारमुं उक्ति गोनां थोंखोरों नायथुगुइ कारिनानि ताय बनो जासारवै तिसानानि राजेन्दर सिंहजी पान्जाब अबहायनो कायसा सामुं खालाय दंगो राजेन्दर सिंहजी अमहायनि खरकसा बरक जेनि मुंनि बोसखाङाव सिनियर ककथाय गदालजाग दंगो ब अबदलबाय गदालजाग जे बदल 1980 बिसिव अलम्पिक हकी थमुंग रांसाकनि सखात मानो ब 1982 बिसिव विश्वकापनि खरकसा मुं गोनां थोंखोरों थंबानि 2001 बिसिव भारत पुइला सोलारंनि जुनियर हायुंकाप सखात जितिव 2003 बिसिव हाक्टर सिनियर काप जितिव ब अ कायनिनि टुर्नामेन्टनि कोच ओंगै सामुं तांखा ताबुक ब राउन्ड क्लास हकी एकाडेमिनि बिसिंतै बिनि अ नाहारमुंनो सोखांगै तलाङै दंगो बिनि सायथुमुंबाय कामिरग ताबुक गोताल हकी एस्ट्रोटार्फ बजाखा राजेन्दर जिनि नाहारमुं बेलायनो स्राय स्राय जे कामिरग काहाम कुचिंनि सेब साब गोरै अमहाय कामिनि चेरायरगनो रुतुक रुतुक कारिनानि अमहाय चायतुमुनि बिसिंतै भारतनि जुनियर ता सिनियर बेरम गोबांमा थोंखोरोंरग बायथोंनो सासारुइ तिसाका राजेन्दर सिंहजीनि सामुंनि बलायमुं सावै साबाया आनि खापंनि हाक्तुनि लुकुरग आमलाय चिनि जतनि सिनिजा कायसा बोथाय अबबाय सोनामजाग आचार ताय जेम गोबांमा नुखुंगनो जाजागो बाक्साबा आमलायनि जुसनो थगजागो ताय गोसांमा जराखे चवनप्राज चिनि सालबुनु चामुंनि दाल कायसा ओङै बाचौ चिनि आचाय सेखां सं कुसुं कुसुं जरा रमैन आमलाय नि हामारिनि ककनो सावैथांका किसिंसं ओ आमलायनो ताबो उत्तर प्रदेशनि प्रतापगढ़ कायसा कोताल चासमुंनि यापरि ओङै कासाका प्रतापगढ़ ताय प्रतापगढ़ बाय आमलायनि हालक बेलाय गोजाम आरोनि हुकबार खालायनायरग आगिनि सिमिनो बरक आमलायनि हुकबार खालायि फायो आमलाय ताबुक प्रतापगढ़नो कायसा सासामुंनि सिनिमुं रुइ दंगो ताय ताबुक आ गोसाम सिनिमुंनो आरोनि हुकबार खालायनाय ताय बोरैरगनि बागै सेब कोताल तुबै दंगो वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टनि बिसिंतै आमलायनो तै आमसायनि साखथांनाय रकनो खा बासार जागै दंगो ताबुक प्रतापगढ़ आमलायनि प्रसेसिं बाय गोरोंजाग ओंया हमपानाव सारा इउनिट सामुं तांजागै दंगो ताय सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय गोदालजाग बोरैरग जतनि साय कतर सामुं तांगै दंगो अबहायनो कायसा ग्रुप ओंखा देवगढ़ कामासि कामिनि साबित्री फुले एसएसजि ग्रुप बाय गोदालजा बोरैरग आमलायनि केन्दि जेम ताय जुस
सनामै तंगो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तांग बतांगने बिसिंते कताल कताल हाथीओ अमानै फालजांमा बाय बरकनि आजिमुंबो बांगै तंगो अबो हाइकेनो कायसा कामिओ बिद्दाबासिनि मुंगै कायसा सेल्फ हेल्प ग्रुप तंगो अ ग्रुपनि बुरै रखे आमलाइनि आसार डाइजेस्टिव पाउडार ताइबो जुदा जुदा मानै सनामै तंगो अ बुरै रग अ प्रसेसिंनि बागै नांमानि मेसनारी बो मानखा तै लोन नि सेबो मानखा बरक आमसाइनि बानिया तेरो मानै फालनानि सेबो मानखा तै जरा किसानि बिसिंगैनो बरकनि आजिमुं बांखा किसिंसं चिनि हाक्थुनि जुदा जुदा आमसाइनि बायथों सिनिमुं तंगो बाक्सा थायो तंगो बथाय बाक्सावके श्री सिटिनि हुखुमु मुखुमु तै बाक्सावके तंगो बिनि रंगमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्टनि बिसिंते अबरखनो आवायमिंनि बिनि नाहारमु चिनि चायतुमुं ओंखा नांनाय चिनि कामि तै दलिनि सिनिमु आमसाइनि हाथिरगो सिमि कसावि ता तंथुम अब हाक्तनि जुदा जुदा थाय तै हायुनि जुदा जुदा हाथिओ सगैरना नांनाय अब न बुकाल फर लोकाल तांग बुतांगनो चासरुइ तिसाओ बायथां सुखजाग भारत सनामथानि बो खा बासारिओ बोसकांनि तेरग बुकाल फर लोकालनि कम थायु रखनो बो पखे सुगलाग आरो खापुनि हाक्तनि लुकरक सेप्टेम्बर ताल अपुस्तिनो केबेंगै सबनि बागै याफारजाग पुस्तिनि अतालो जुदा जुदा दिखुलनि लुकु ताय मथारक बलायजांनाय सामुं बाय गदाल लायो अपुस्तिनो केबेंगै चबावो चबा खलायना बागै ताक्लाय बिसि गोबांमा बलायजांनाय यापिर रमजाखा छत्तीसगढ़ हारगर मुंगा घर घर मुंगा अ तांगबुतांग चेंखा अ आउमुं तांगबुतांगनि बिसिंते लुकुरखनो सारबुनमुं चामुंगो सेसनानो तन्नानि बागै खा बासार जाखा गुजरातबो मासैबाय सोनामजाग चामुंनि बाथायमुं बांगि चेंजाखा आ बाथायमुंनि बिसिंतै पुस्टि गोनां आमसाइनि सामुंनो रां किसाबायनो मानथगै तंखा ताबुसुग जरा नै रासाय निसाय गोबां लुकरक अ बाथायमुंग' मानजाखा महाराष्ट्रबो अबहायनो बलायजाखनाय सामुं खलायजाखा आरो फोरोंनाय अंगनवारि वार्कार बुमा बुफा अ सिसारमुं सामुंबाय गोदालखा मिजोरामम ताक्लाय बिसिव पुस्ति बागान नायकानिनि बागै लुकरक गोथालायि सामुं खालायखाते आवयमुं चेंखा अब मिजो हौवानि तालुमार याना सिरसिटि बाय गोदालजाग बिनि ककमाङोंखा साखथारि सेबा खालायमुं तै जत' जरव बुइनु जबाना बागै सोखाङै तंनानि अमहाय चायतुमुं बेलायनो बलायजाखनाय आंगनवारि सेन्टार बाय गोदालजाग जत' लुकुरखनो तै आनि कुंसुगु आंगनवारि सेन्टारो ताबुक पुषण ट्रेका डिजिटेल बाय गोदालजाग ओंया हम्पानो चुकु रोजाग सेब माननाय रखनो रेजिस्ट्रेसन खालायजाखा अबबाय सराय सागदेरिया बोरै तै दुदचारिउ तंनाय बुमारकनि साख हामखारायनि नायखनि खालायथानि बेलाय हामखाराय ओङै तंगो जों अबहायखेनो अपुस्तिनो केबेङै चबा खायै बोसखांग' तलाङै थांना नांनाय जोंथिनि दफानो जेतिके फानो अपुस्तिनि याकनि फियक सुखना नांनाय किसिंसं जों जतन' अताल बोखाबाय खुलुमलायै गणेश मोताय तेरपालायखा हाक्ट गोनाङै गणपति बाप्पानो खाबाय खुलुमबायखा तै लामसका अतेर गोथार बेबा हाफारनो तंथतक खलायतिसाखा किसिंसं केमैमुं कातिरनाय मताय गणेश एलेम सिमुं तै सामुं काहामनि मारि मताय गणेशनो खुलुमलायमानि भारत हावसिमिया साना थांगे थाइलेण्डो तंनाय मोजां पेन्थुन थिरकानजुनि ककनोनो वानसुगैनायदि आरो मताय गणेशनो मताय रोजागु फारा फिकानेट मुंगै तै बिनि
उमर जेफू

0: जीजूको आफ्नो बुफा बनो मताई श्री गणेश नि माङ्पली याफरमानी आरोनि सिमिन मताइन पोइतो तैमानी सिसा उइफायो ब मताय श्री गणेश बाई गदालजा श्री सिथिनी सरंगना बागै बरैसि बिसि लाइरेखा ब बारताय नेपालनो खबुइ एसियानि गोबां मा हाक्टरगो बेरायखा महाराष्ट्र बाय बिनि आलायदा गदालजाक दङ अस्त्र विनायकनि श्री सिटिनि ककनो सायमामानि याकलो गोबांमा जरा ब आरो फायखा बिनि साइतमा बाहायनो थाइलेन्ड अस्त्र विनायकनि लोको खाफुमु मानै फायखा 2002 बिसव ब उत्तर थाइलेन्डनि चियांग माय गणेश हिमेल म्युजियम संसाखा ताबुक आरो चि साइनि गोबां मताय गणेशनि मूर्ति तंगो जे लुकरक भारत फायै मान्या बरकनि बागै म्युजियम अस्त्र विनायक मूर्तिबो तंजाखा आरो ककटिसाल ब्रुमन फुंग दामचि जराव गणेशनु मताय बारुक जागो मताय गणेश बाई गदालजाक नांकुकमानि जरावबो रायदा तै मताय रजागो अब फुनुगो बाहायखे भारतनि पुइतु रबायताय श्री सिटिनि हुकुमु गुबुन हाक्थरबो लोको खाफुरमु मानितं आं दियायो गणपति बापानि रुवाय जत जराव जतनि साग फिनजागै तंथुन किसिंसं मनके बातनि जत एपिसोडनो एपिसोडनि यागल आं नरकनि जुदा जुदा ककलाबन तुइ नरकनि ककतुन मानो नर अबहायखेनो खा बासाजांनाय ककतुमारकनो रहरि तंदि जेफ्रु नरक नरकनि गाना गिनि ओंगै तंमानि अमहाय साइतुमुंनो बलायानो आफ्रो बरकनि खा तैब थांसै फायानो हाक्तरनि जुदा जुदा थाय तंनाय लुकरबो मनके बातनि बिसिंतै बरकनि ककनो सायमानै खा बासावानो नरकनि सुबासु बाय आसामुं तैब सोखाङै थाङानो बोसखांनि तेरग नुखुंनि बरक ताय किसिंसं बाय हहम ददमखेन तेर फालायदि आं तेवैसा नरक जतन आनी खाबाय हामबाय याफारो बेलाय बेलाय हामबाय खुलुमका
1: এতক্ষণ শুনছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 138তম মন কি বাত অনুষ্ঠানের ককবরক রূপান্তর। অনুষ্ঠানটি একযোগে প্রচারিত হয়েছে আকাশবাণী আগরতলা, FM উজ্জয়ন্ত, আকাশবাণী বেলুনিয়া, আকাশবাণী কৈলাসহর এবং রাজ্যের সমস্ত রিলে কেন্দ্র থেকে।

0: मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें छठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस तमिलासरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। 3 पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए। और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
1: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को 5-0 से मात दी। परवीन ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अत्थापोंग सेकतेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला आरएससी यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का तीसरा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, परवीन, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे।
0: Much like this, 2 medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final, where he went down to Malaysia's Yan Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal that they had won with pride, and it is just the beginning of something special in Indian squash. India have won its most medals in the shooting range in this year's Asian Games. What happened on Sunday? Vidushi Vats with the report.
2: Starting with the women's trap competition, Neeru Dhanda continues to be one.

0: of the standout performers for India. She's currently sitting at number 1 in the individual standings, hitting 48 out of 50 targets. There is also good news in the team competition. The Indian women's trap team has finished day 2 in second position, keeping themselves firmly in medal contention as the event moves towards its final stage. Ashma Ahlawat is currently placed 16th individually. Moving to the men's trap event, Kainan Chennai made a brilliant start, producing a perfect opening round by hitting all 25 targets. He followed that with 22 in the next round and is currently placed 11th individually. Shapath Bhardwaj is currently in 22nd position, while the Indian men's team finished day 1 in 7th place in the team standings. And now, moving from trap to pistol, the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Esha Singh is leading the Indian challenge at this stage. She finished the precision qualification with 290 points, putting her in 6th position. Rahi Sarnobat and Manu Bhakar are next for India, both finishing on 287 points. Rahi is currently placed 15th, while Manu is at 16th. Importantly, this is not the end of the 25-meter pistol competition. There is still more action to come, with the Indian trio looking to build on these scores as the event progresses.
1: दूसरी तरफ हॉकी के मैदान में भारतीय टीम का विजय रथ जारी रहा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 7-0 से जीत पा इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ग्रुप स्टेज पर अजय रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपना ग्रुप स्टेज कैंपेन अंत करे। अब सेमीफाइनल में सामने होने वाली है दक्षिण कोरिया। कुछ इसी तरह के संकेत आर्चरी रेंज से भी देखने को मिले हैं, विदुषी बताती हैं।
0: इन द मेंस रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल, धीरज, नीरज एंड यशदीप प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट चाइना, विनिंग 5-2 टू बुक देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। द वुमेन्स रिकर्व टीम ऑफ अंकिता, कुमकुम एंड कीर्ति डिफीटेड चाइनीज ताइपे 6-0 इन देयर क्वार्टर फाइनल टू मार्च इन टू द लास्ट 4। एंड इंडियाज मिक्सड रिकर्व टीम ऑल्सो मेड इट थ्रू। धीरज एंड कुमकुम हैव बीन क्लिनिकल थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेज। दे बिगैन विद 6-0 victory over the United Arab Emirates in the round of 16 and followed that up with another commanding 6-0 win over Vietnam in the quarterfinal, and now have a semi-final against Japan to look forward to. So in recurve, India has 3 teams through to the semi-finals. The men's team will face Iran, the women's team will take on China, and the mixed team will face Japan. These 3 recurve semi-finals are scheduled for October 2nd. But the good news from Indian archery does not stop there. The compound teams have also delivered across the board, with India reaching the semi-finals in the men's, women's and mixed team events. In the men's compound team quarter-final, Sahil, Ganesh and Kushal edged past Bhutan 235-232 in a closely fought contest. The women's compound team of Chikita, Jyoti and Pritika also booked their semi-final place, defeating Kazakhstan 233-230. And there was another impressive performance in the compound mixed team event by Chikita and Sahil, who first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16 before overcoming Kazakhstan 159-154 in the quarter final. They are now through to the semi-finals, where they'll face Thailand. The compound men's and women's team will both face South Korea in the semi-finals. These 3 compound semi-finals are scheduled for September 30. All in all, it has been an absolutely fantastic day for Indian archery.
1: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
2: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में

0: जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोली टैन और थीना मुरलीधरन से 18-21 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21 21-18 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था इसके साथ समाप्त हो गयी।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
2: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रॉ, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा आइए जानते हैं।
3: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered two defeats in two Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
0: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग बुक होंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा आइए जानते हैं।
3: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 तजाकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स ये ऑन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वॉज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। भारती ऑल्सो वेंट आउट इन द राउंड ऑफ 16 लूजिंग 0-3 टू ईरान तहेरे। सो फोर इंडियन कुराश एथलीट्स इन एक्शन टुडे एंड ऑल फोर हैव नाउ बीन एलिमिनेटेड।
1: Moving on to fencing.
3: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last eight. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुबाब लेकर आलोक,
2: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर है। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की, पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसु राउंड में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.9

0: 6 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे रन में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बॉल में, कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड 2 का मुकाबला जीता, लेकिन राउंड 3 में वो अपना मुकाबला हार गए। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 90 पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड, 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
2: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
1: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना इन पर इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस विल स्टार्ट। वी विल हैव आवर आईज ऑन मेन एंड वुमेन फ्रॉम बोथ एंड will be fighting for a medal in the 1500 meter men's race. Meanwhile, Parul Chaudhary, who won a gold medal in the 5000 meter in the previous Asian Games, will be competing tomorrow. In the men's long jump final, Murali Sri Shankar and David Patturaj will be featuring. Bada daud mein 400 meter mein purushon mein Tamila Saran to mahilaon mein Vidya Ramraj final khelengi. Bharat ki mixed relay team bhi 4 guna 100 meter ki daud mein final khelte hue nazar aayengi. Seema will also feature in the women's discus throw final. तो वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेंस एंड द विमेंस टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तकराव डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुबाब लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
4: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
5: শ্রোতা বন্ধুরা, এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন জাপানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো দিল্লি কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হচ্ছে। আবারও ফিরছি মূল অনুষ্ঠানে।